0: खातिर मर गया राजा छोड़ के तख्त हजारा
1: so what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी
1: big deal dude
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी दिन भर सेक्टर 17 भाई दिन भर सेक्टर 17
1: ओ मैन
2: मैनू नहीं चाहिदा कोई राजा
1: चल झूठी
2: नारा छे दी यारी वीरे मैनू ते चढ़िया चा पैशन दा
1: हाय चुकला रब्बा मैनू
2: मैनू ते चढ़िया चा पैशन दा कोई तो